जाने रे, जो सी पीड़ पर आई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइयां लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

0: मथाला बैठे तुम की दर्द न जाने, हसी बहुता दर्द हंडा बैठे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जेठपुरी जी तो बाद हुण मैं सदा देन जा रहा हाँ। डॉक्टर इंदरपाल कौर जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो रजिस्ट्रार वजों रिटायर हो चुके ने, ते अज वो साडे श्रोतियां लई अपनी कविता चाहत लेके हाजिर ने। डॉक्टर इंदरपाल कौर जी, थोड़ा स्वागत है।
2: सारे श्रोतियां नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं श्री हरबंस ह्यून जी दा तहे दिलों शुक्रिया अदा करती हाँ जिन्हां ने मैनू दुआबा रेडियो लाइव प्रोग्राम विच अपनी कविता पेश करने लई मौका प्रदान किया है। उन्हां ख्यालां विच गुम होण दी जरूरत नहीं उन्हां ख्यालां विच गुम होण दी जरूरत नहीं जो सुपने विच अते हकीकत विच भी तुहाडे नहीं हो सकती। मेरी कविता है चाहत। मैं कुछ कहना चाहया पर किसी ने ना समझिया। मैं कुछ कहना चाहया पर किसी ने ना समझिया। मेरे बोल हवा विच्चों दी हो के मेरे कोल ही वापस परत आए। मेरिया अखा ने कुछ समझाना चाहया। मेरिया अखा ने कुछ समझाना चाहया पर किसी ने गौर ना कीती। मेरी नज़र दूर तक जाके मेरे कोल ही वापस परत आई। मेरे होंठ अरजोई करते रहे। मेरे होंठ अरजोही करते रहे पर किसी ने ना निहारिया। होंठ फरक के ठहर गए। मेरी खामोशी मेरे कोल ही वापस परत आई। मेरी कलम ने कुछ लिखिया। मेरी कलम ने कुछ लिखिया कुछ अन कहया छड़ दिता। किसे नू समझ ना आई। मेरी लिखत मेरे तक ही सीमित हो के रह गई। कोई अपना लग्या कोई अपना लग्या दिल दी गल कहनी चाही। कोई अपना लग्या दिल दी गल कहनी चाही पर उस कोल वक्त नहीं सी ठहरन दा। दिल दी गल दिल विच ही रह गई। मैं खामोश हो गई। मैं खामोश हो गई तां अपनियां ने निहोरा मारिया। मैं खामोश हो गई तां अपना ने निहोरा मारिया। ये कह के हुण पहला वांग मैं उन्हां विच घुल मिल नहीं रही। मैं कुछ कहना चाहिया पर किसी ने ना समझिया। मेरे बोल हवा विच्चों दी हो के मेरे कोल ही वापस परत आए। शुक्रिया जी।
1: ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਪਾਸ਼ਿਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਪਾਸ਼ਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਅਪਾਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
3: ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਪਾਸ਼ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਤਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੈਰਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਚ ਧਰਿਆ ਹੈ ਕੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ ਜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਾਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੀਜੋਗੇ ਬੱਧੀ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀ

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

मामे मासियां बुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। मामे मासियां बुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। भैन ने आनी बकड़ी पारोवे, भैन ने आनी बकड़ी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई। सोरे घर जाती है कर लई फर्जां दी कमाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

0: होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई। पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोस मनाई। चुग लतीए जाके जिथे लेखां चोग खंडाई, चुग लतीए जाके जिथे लेखां चोग खंडाई। जा सौरे कर तीए ले जा लाडा परी विदाई, जा सौरे कर तीए ले जा लाडा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूपी तों बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहा कि आन ते अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो, मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है, आदमी ओ अमीर है। कीते जिसने बड़े कपड़े, कीते जिसने बड़े कपड़े, बनिया ओ कल वजीर है, बनिया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा, अमीर सी सभ्याचार साडा, गायकां कीता लीरो लीर है, गायकां कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले, पहला पाले घोगड़ बिले, हुण सीने मारदा तीर है, हुण सीने मारदा तीर है। दुध तो सारा डेरी जावे, दुध तो सारा डेरी जावे, ताइयों काना शरीर है, ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े, सुधर जांदे बड़े बड़े, डंडा लुच्चियां दा पीर है, डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने, घर घर रांझे जमदे ने, पिटदी फिरदी हीर है, पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे, कातल दे गल फुल पैंदे, सच दे अखी नीर है, सच दे अखी नीर है। असीं इक्को मां दे जाए हाँ, असीं इक्को मां दे जाए हाँ, बिच मजमा पाई लकीर है, बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्कां लई लड़दा है, टोनी जो हक्कां लई लड़दा है, दसांझ ओ बहादुर वीर है, दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्नवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तों बाद हुण मैं कपूरथला बसदी साडी शायरा रजनी वालिया नूं कामे फल दे विच सदा देण जा रहा। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਜਨੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਵਾਲੀਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ।

वे कबूतरा वे कासदा तेनु सच्चे रब दा वास्ता, वे तेनु सच्चे रब दा वास्ता। जावे ले जा सुख सुनेहा मेरे सोने यारां दा, उस दे सिर तो सजदा वारी मेरे गूड़े प्यारां दा। जावे ले जा सुख सुनेहा मेरे सोने यारां दा, उस दे सिर तो सजदा वारी मेरे गूड़े प्यारां दा।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे राधा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हनेरे नू

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर ना।

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल, चले हैं सब

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लद

तेरिया किस काम दितिया ने आजाऊं। इल्म पढ़या ते अमल न किता हो। तेरिया किस काम कितिया बातां,

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइया सबे पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड़ के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रहा नी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया हा रादा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

0: दिन रात मेहनता करदे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों करदे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत कर दे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो, ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवें उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलकां नू हंजुआं दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करके मैनू याद, बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा,

तैनू याद आएगा, किदां हिजर दे दाग, किदां हिजर दे दाग, तो या करेंगी तू करी करके मैनू याद।

पक्का वो जो होण देवे कच्चिआं दी हानी ना, कच्चिआं च पल रही जून भी बेगानी ना।